हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डी चैनल। संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है मन्ना डे के स्वर में। बोल तहिते आयो शरण सवेरे।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। लीजिए सुनिए आलोक गांगुली के स्वर में ब्रह्मानंद की ये रचना, सुनो सुनो ध्यान से प्यारा।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंडित जगदीश प्रसाद का ख्याल गायन राग अहीर भैरव. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रघुनाथ नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सोहनलाल शर्मा. राग अहीर भैरव में ख्याल, कलाकार पंडित जगदीश प्रसाद.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रेंडिशन. लिसन टू ख्याल इन राग अहीर भैरव. Our artist this morning, Pandit Jagdish Prasad, accompanying on the tabla, Raghunath Nandi, and on the harmonium, Sohan Lal Sharma. Now, listen to a khayal in Rag Ahir Bhairav. Our artist, Pandit Jagdish Prasad.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित जगदीश प्रसाद। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे रघुनाथ नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सोहनलाल शर्मा। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए सुनते हैं पंडित संदीपन समाजपति का ख्याल गायन राग बैरागी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं हिरणमय मित्रा। राग बैरागी में ख्याल, कलाकार पंडित संदीपन समाजपति।
1: You are listening to a Khayal in Raag Ahir Bhairab. Our artist, Pandit Jagdish Prasad. Accompanying on the tabla, Raghunath Nandi, and on the harmonium, Sohan Lal Sharma. This is Raagam, 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a Khayal in Raag Bairagi. Our artist, Pandit Sandipan Samajpati. Accompanying on the tabla, Devashish Sarkar. And on the harmonium, Hiranmoy Mitra. Now, listen to a khayal in Raag Bairagi by Pandit Sandipan Samajpati.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बैरागी में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित संदीपन समाजपति।

0: आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे हिरणमोय मित्रा। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू ख्याल इन राग बैरागी बाय पंडित संदीपन समाजपति, एकम्पानिंग ऑन द तबला देवाशीष सरकार एंड ऑन द हारमोनियम हिरणमोय मित्र। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित राजेंद्र अंतरकर का तबला वादन. उन्हें हारमोनियम पर लहरा संगति कर रहे हैं अतुल फड़के. प्रस्तुत है ताल तीन ताल. दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट तबला रिसाइटल बाय पंडित राजेंद्र अंतरकर. ही इज अकंपनीड ऑन हारमोनियम फॉर लहरा बाय अतुल फड़के. पंडित राजेंद्र अंतरकर प्रेजेंट्स ताल तीन ताल.

ये था ताल तीन ताल। पंडित राजेंद्र अंतरकर अब प्रस्तुत करते हैं ताल पंचम सवारी। दैट वॉज ताल तीन ताल। पंडित राजेंद्र अंतरकर नाउ प्रेजेंट ताल पंचम सवारी।

ये था ताल पंचम सवारी। पंडित राजेंद्र अंतरकर अब प्रस्तुत करते हैं ताल द्रुत तीन ताल। दैट वॉज ताल पंचम सवारी। पंडित राजेंद्र अंतरकर कंक्लूड्स हिज तबला रिसाइटल विथ ताल द्रुत तीन ताल।

ये था ताल द्रुत तीन ताल। आप सुन रहे थे पंडित राजेंद्र अंतरकर का तबला वादन। उन्हें हारमोनियम पर लहरा संगति कर रहे थे अतुल फड़के। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज ताल द्रुत तीन ताल। यू वेर लिसनिंग टू तबला रिसाइटल बाय पंडित राजेंद्र अंतरकर। He was accompanied on harmonium for Lehra by Atul Phadke. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया राग बिहाग. आलाप के बाद विलंबित और द्रुतगत क्रमशः तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने.
2: This is the Rag Channel of All India Radio. We now present a sitar recital in Rag Bihag by Pandit Debu Chaudhary. The alap is followed by vilambit and drutgat set to teen tal. Pandit Debu Chaudhary is accompanied on the tabla by Rafiuddin Sabri.

0: अभी आप पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया राग बिहाग सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए धुन राग मांड। तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग बिहाग प्लेड ऑन द सितार बाय पंडित देबू चौधरी। लिसन नाउ टू धुन राग मांड। द अकॉम्पनीमेंट ऑन तबला इज प्रोवाइडेड बाय रफीउद्दीन साबरी।

0: अभी आप पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया धुन राग मांड सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी रफियुद्दीन साबरी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू पंडित देबू चौधरी प्लेइंग धुन राग मांड ऑन द सितार। ही वाज अकंपनीड बाय रफियुद्दीन साबरी ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है उस्ताद फारूख लतीफ का सारंगी वादन. आइए सुने राग ब्रह कल्याण. आलाप के पश्चात द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग सारंगी रिसाइटल बाय उस्ताद फारूख लतीफ. लिसन टू राग गोरख कल्याण इन विच यू लिसन आलाप फॉलोड बाय द्रुतगत set to 3

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था राग गोरख कल्याण। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे थे पंडित राजेंद्र अंतरकर। कार्यक्रम को जारी रखते हुए उस्ताद फारूख लतीफ अब सारंगी पर प्रस्तुत कर रहे हैं राग मेघ। आलाप के पश्चात मध्यलय गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वॉज राग गोरख कल्याण। यू आर लिसनिंग ऑन सारंगी बाय उस्ताद फारूख लतीफ। अकंपनिंग हिम ऑन तबला वॉज पंडित राजेंद्र अंतरकर। इन कंटिन्यूशन ऑफ प्रोग्राम उस्ताद फारूख लतीफ प्रेजेंट राग मेघ। आलाप फॉलोड बाय मध्यलय गत सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल।

0: ये था राग मेघ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उस्ताद फारूख लतीफ का सारंगी वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अजीत पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: दैट वॉज राग मेघ। With that, we conclude Sarangi recital of Ustad Farooq Latif. Accompanied him on tabla was Ajit Pathak. This was the contribution of AIR Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चार ताल की सावरी और तीन ताल में तबला वादन. आज के कलाकार हैं देवाशीष मुखोपाध्याय. आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सोमनाथ बर्धन. देवाशीष मुखोपाध्याय तबले पर पहले प्रस्तुत कर रहे हैं चार ताल की सवारी.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन टू अ तबला रिसाइटल इन चार ताल की सवारी एंड तीन ताल. Our artist this evening, Devashish Mukherjee, accompanying on the harmonium, Somnath Bardhan.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप चार ताल की सवारी में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे देवाशीष मुखोपाध्याय। देवाशीष मुखोपाध्याय अपना तबला वादन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रहे हैं तीन ताल में तबला वादन।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे देवाशीष मुखोपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे सोमनाथ बर्धन। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग झिंझोटी में बांसुरी वादन। आज के कलाकार हैं अशोक बंद्योपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार।
1: यू आर लिसनिंग टू अ तबला रिसाइटल इन चार ताल की सवारी एंड तीन ताल बाय आवर आर्टिस्ट देवाशीष मुखर्जी एकॉम्पैनिंग ऑन द हारमोनियम सोमनाथ बर्धन। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट Now listen to a flute recital in Raag Jhinjhoti. Our artist this evening, Ashok Banerjee, accompanying on the tabla, Devashish Sarkar.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग झिंझोटी में बांसुरी वादन सुन रहे थे। कलाकार थे अशोक बंद्योपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a flute recital in Raag Jhinjhoti by our artist Ashok Banerjee, accompanying on the tabla Devashish Sarkar. This program was recorded and

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं श्यामलाल और साथी का शहनाई पर बजाया राग आभोगी। विलंबित गत एक ताल में एवं द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।
2: दिस इज रागम। टुडे इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट यू शहनाई रिसाइटल बाय श्यामलाल एंड पार्टी। रिसाइटल इज इन राग आभोगी। विलंबित गत इज इन एक ताल एंड द्रुत गत इज इन तीन ताल।

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। ये था शहनाई पर बजाया राग आभोगी। कलाकार थे श्यामलाल वसाथी। और आइए अब सुनते हैं उस्ताद अली हुसैन वसाथी का शहनाई पर बजाया राग बागेश्री।
1: दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू वर लिसनिंग टू शहनाई रिसाइटल इन राग आभोगी रिसाइटेड बाय श्यामलाल एंड पार्टी। वी नाउ प्रेजेंट शहनाई रिसाइटल बाय उस्ताद अली हुसैन एंड पार्टी इन राग बागेश्री।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ध्रुपद गायन. कलाकार हैं विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर. राग है भैरव. इसमें आप सुनेंगे आलाप, जोड़ और एक रचना जो चौताल में निबद्ध है. बंदिश के बोल हैं विष्णु चरण जल ब्रह्म कमंडल. संगत कलाकार हैं पखावज पर पन्ना लाल उपाध्याय. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1989 में की गई थी. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग भैरव. The accompaniment has been provided by Panna Lal Upadhyay on the Pakhavaj. This was recorded in the year 1979.

अब आप सुनेंगे राग रामकली में धमार, बोल हैं एरी आली भाई भोर, कलाकार हैं विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर। नाउ लिसन टू अ धमार रेंडिशन इन द राग रामकली बाय विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर।

आप सुन रहे हैं विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर का गायन। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर का गाया राग खमाज में आलाप जोड़ और एक रचना जो चौताल में निबद्ध है। बंदिश के बोल हैं मायरी बरजो न मानत। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग खमाज।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर का गायन। संगत कलाकार थे पखावज पर पन्ना लाल उपाध्याय। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर। द कंप्लीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय पन्ना लाल उपाध्याय ऑन द पखावज। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है नीता माथुर का गाया राग बिहाग. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं कैसे सुख सोवे, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं आली री अलबेली सुंदर नार. तबले पर आपकी संगति की है पंडित केदारनाथ ने, और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल जनरेशन इन राग बिहाग बाय नीता माथुर. द विलंबित ख्याल इज सेट टू एक ताल. द वर्ड्स आर कैसे सुख सोवे एंड द्रुत ख्याल इज सेट टू तीन ताल. द वर्ड्स आर आलीरी अलबेली सुंदर नार कंपनीड बाय पंडित केदारनाथ ऑन द तबला एंड ऑन सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी.

0: अभी आप नीता माथुर का गाया राग बिहाग सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए राग जोग। मध्य लय ख्याल रूपक ताल में निबद्ध है, बोल हैं हो बलमा, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं साजन मोरे घर आए। तबले पर आपकी संगति की है पंडित केदारनाथ ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल जनरेशन इन राग बिहाग बाय नीता माथुर। नाउ वी प्रेजेंट राग जोग। द मध्य लय ख्याल is set to Rupak Taal. The words are Ho Balma and Drut Khayal is set to Teen Taal. The words are Sajan More Ghar Aaye, accompanied by Pandit Kedarnath on tabla and on sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami.

0: अभी आप नीता माथुर का गाया राग जोग सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग देश। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं झूलत सांवरे संग गोरी। तबले पर आपकी संगति की है पंडित केदारनाथ ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल जनरेशन इन राग जोग। नाउ लिसन टू राग देश। मध्य लय ख्याल इज सेट टू तीन ताल। द वर्ड्स आर झूलत सांवरे संग गोरी, अकंपनीड बाय पंडित केदारनाथ ऑन तबला एंड ऑन सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी।

0: अभी आप नीता माथुर का गाया राग देश सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी पंडित केदारनाथ ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय नीता माथुर अकंपनीड बाय पंडित केदारनाथ ऑन तबला एंड ऑन सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है भारतीय संगीत का रागम DTH चैनल. हर दिन हर पल भारतीय संगीत. संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है. स्वर है मलय बनर्जी का, बोल है विनती सुनो मेरी.

0: आप सुन रहे हैं रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। लीजिए सुनिए उषा मंगेशकर के स्वर में संत रैदास की रचना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।
1: प्रभु

संजीवनी भैलांडे के स्वर में आइए अब सुना जाए संत मिबाई की ये रचना, तुम मोरी राखो लाज हरी।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। सविता बनर्जी की आवाज में आइए सुनते हैं गुरु नानक रचना, बोल है एक सहारा है तुम्हारा।